0: लस्सहे मेबे फेबेमा रंगमाजे आरसीसी दिम गोरा चहरा दिन प्रे रखोरमा नगफारममा असिम चमटार की ट्रनेलमा सिंगबै सुर सिंगजेपल मुबा होले सिंगबै सुर मुसम ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सेगो है रोमा हुजुरिमी टीम फिटिंग सिंगबै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरला जम्मनु सामानमा होलसेल मूल्यारी यंगबा असेम दिम सम्मन बोरबरी ढुवानीला सुविधा न मुबा क्रयुर्नाले बजार कोर्ब आही नै रोमा सेगो बरो ओम टंकेश्वर इंटरप्राइजेस धादिंग बेसी सुगम टोलरी सम्पर्क नम्बर चाहिँ 0105204070 असेम 98511 87882 फोन सिन्जिम सेगो है रोमा
1: रेडियो बिहानी समय संकेत यति बेला बिहानको 6 बज्यो।

0: तपाईं रेडियो बिहानी 97.6 मेगाहर्ज सुन्दै हुनुहुन्छ।
1: अब रंग फेसु मुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माइ फेथ नला विश्वासी समक बसुगो यांगला परमेश्वर जबा आबा हिन्बमुला जयमसी तथा नमस्कार स्पार्क माइ फेथला स्वागत मुला ना बियोग तामाङ यांगला परमेश्वर जबा आबा मुसुला एक युहन्ना तीनला एक अध्याय च्यागो आवश्य याङदा हरङदा किसिमसे प्रेम लसुबा मुला कि याङला सन्तान दिसी पिगाबगदे हिन्बा थेहेन्दे साचिन एन हिन्बा चु पछि बिमुला च्यागो आवश्य याङदा हरङदा किसिमला प्रेम लसुबा मुला परमेश्वर याङ यागर्घी प्रेमिलो आबा मुसुला जब याङसे यसुदा याङला प्रभुला रूपरी स्वीकार लासी मुक्ति याङला याङ परमेश्वरला सन्तान दोला तेहेन्दे परमेश्वर जेखेन जब आबा जेखेन ताला आहिन्बा परमेश्वर याकर्की अद्भुत आबा मुसुला भजन संग्रह 84:11 एरङबे मुबा तिग दबिसम परमप्रभु परमेश्वर दिनी देन ढाल मुसुला परमप्रभु से जबा देन इज्जत पिन्छु मुला सत्य ग्रामरी ब्रभागा देदा परमप्रभु से हाजी भाई भलो थोक ज्ञान वञ्चित थान्छु आला तिग दबिसम याङला लुइला कठिन सोबारी मलाइबा बोमोर रेबा आमा आबा आहिन्बा परमेश्वर याङला दातेला परिस्थितिला बारेरी सिम्बा देन उदासीन आहिन्बा चुपद ज्ञान परमेश्वर से याङ ज्ञान हाजीबाई भलो थोक ज्ञान वञ्चित अथन्बा प्रतिज्ञा लसु मुला भजन संग्रह 21:2 रङ्से थेला मनोरोध पुरा लसुला थेहेन्दे थेला सुङला बिन्ती रङ्सी इन्कार लसुबा आरे परमेश्वरले इच्छा याङसे थेहेन जुबा तिङ स्पर्शी प्रार्थनाला जवाब पिनबारी हिन्बा भजन संग्रह 20:4 एङबी मुगा परमेश्वर से रङला मनोरथ पुराण नक्ष दिन रङला बेनन योजना गरे सफल लसु मुला परमेश्वर से बेनन योजना गरे पुरा लाभरे सेम लसुव मुला भजन संग्रह 37:4 परमप्रभुले आनन्दित मुसुला थेहेन्दे रोसे एला मनोरथ जिन्ना लसुला जब परमेश्वर रङला लुइला इच्छा लुइला नक्ष प्राथमिकता मुसुला जब रङ परमेश्वर द प्रेम लसु मुला थेहेन्दे परमेश्वरला उपस्थिति आनन्दित मुसुला थेनन तामसे परमेश्वरला रङला प्रार्थनाला जवाब पिन्बा मराप ठङमुला युहन्ना 15:7 एनी गदी नरी चिजी विषम थेहेन्दे नला ताम एनी गदेरी मुबा विषम एनी गदेदा जे इच्छा नम्बा रिगो थे एनी गदेला लागिरी लाला रङ रङला अब परमेश्वर द रङला लागिरी जे एन लाभरी अनुरोध लाभरी हमसुला थेहेन्दे परमेश्वर से रङला अनुरोध पुरा लसुला यागर की शर्त चुमुला कि रङ परमेश्वर देन छमरी मुला हाइमा हाइमा रङ द तिगै सेम अलाभरी हाइमा तसै परमेश्वर द थाहा मुला कि थे रङला लागिरी जबा अरे थेरङबा अवस्थरी परमेश्वर से रङला प्रार्थनाला जवाफ अपिन्बा छनोट लासु मुला परमेश्वर रङदा माया लाभा देन हेर्चा लाभा आबा मुसुला परमेश्वर रङदा थे से गदे जेखिन पिन्सु मुला जुन रङदा साचिन तोला थेहेन्दे रङला लागिरी सब भन्दा आछङ लाभ तला भजन संग्रह 145:19 परमेश्वरला भई मान्दिब गदे बेनानला मनोरथ परमेश्वर से पुरा लसु मुला परमेश्वर से थेनी गदेला प्रार्थना ज्ञानसु मुला थेहेन्दे थेनी गदेला बजब लसु मुला परमेश्वर ज्ञान घनिष्ठ सम्बन्ध थानबरी नाइसुगो परमेश्वर ज्ञान प्रेम देन सम्मानला छम हाउ परमेश्वर से रङला प्रार्थना अवश्य दङसु मुला परमेश्वर से रङला रङला दुःखमै फिर्क्याप देला थेहेन्दे रङला लुइरे ज्ञान छुटकारा बला प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन विक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी नेन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारेरी रङला केही प्रतिक्रिया मुसम 01661940 री सम्पर्क लसुगो हस्त त्यो समय रि बिदा दाजी रङनी छङमदानु जयमसी नमस्कार
2: जापानमा बसोबास गर्ने नेपाली अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूका लागि खुशीको खबर। शैक्षिक सत्र 2026-27 लागि नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित जापानकै अग्रणी शैक्षिक संस्था एभरेस्ट इन्टरनेशनल स्कूल जापानमा कक्षा 11 म्यानेजमेन्ट र साइन्स विषयका कक्षाहरूमा नयाँ भर्ना खुलेको छ। अनुभवी शिक्षकहरू, आधुनिक शिक्षण वातावरण, नेपाली पाठ्यक्रम अनुसार गुणस्तरीय शिक्षा, एसईई र एनईबी बोर्ड परीक्षाको उत्कृष्ट तयारी, छात्रवृत्तिको व्यवस्थाका साथै नेपाली अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूका लागि खुशीको खबर। शैक्षिक सत्र 2026-27 लागि नेपाली पाठ्यक्रममा आधारित जापानकै अग्रणी शैक्षिक संस्था एभरेस्ट इन्टर

0: रेडियो था संचार 99.4 निष्पक्ष सक्रियता को अभ्यास
1: 99.4 रेडियो था संचार स्टूडियो टाइम
0: इट्स 12 पीएम
2: हिजो जस्तो आज छैन आज जस्तो भोलि रहने छैन समय गतिशील छ जब समय बोल्न थाल्छ संसार सुन्न थाल्छ यो हो थाहा संचार नेटवर्क समयको आवाज